जब वो उसमें झोंके जाएंगे, वो उसकी एक चीखने की सी आवाज सुनेंगे और वो जोश मार रही होगी।

वो कहेंगे क्यों नहीं, हमारे पास डराने वाला जरूर आया था, बस हमने उसे जुटला दिया और हमने कहा अल्लाह ने कोई चीज नहीं उतारी, तुम महज एक बड़ी गुमराही में मुब्तला हो।

ऊपर पर फैलाते और समेटते हुए नहीं देखा? रहमान के सिवा कोई नहीं जो उन्हें रोके रखे, यकीनन वो हर चीज पर गहरी नजर रखता है।